0: heartbroken, visibly upset and emotional. But Suchika, buck up, a long way to go, and you have given India a lot of pride and something which really bodes well for the future. So an official bronze there for India after the outstanding silver in shooting. And also Sakshi, good news aa rahi hai table tennis se.
1: हाँ जी, गुड न्यूज़ आ रही है अभिनव, आपने अच्छा बोला, टेबल टेनिस की दुनिया से, बिकॉज इंडिया कंप्लीटेड अ 3-0 विन ओवर पाकिस्तान इन द वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई. जी हाँ, श्रीजा अकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान 11-4, 11-4, 11-5, एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स. एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी दोस्तों, जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका योगदान इस भारतीय जीत में बहुत अहम किरदार निभा गया. मैं बात कर रही हूं सिंड्रेला दास की, हु वाज ऑन हर एशियन गेम्स डेब्यू एंड शी बीट कलुसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, thereby हेल्पिंग इंडिया गेन एन अर्ली एडवांटेज ऑफ अ 2-0 अर्लियर विन ओवर पाकिस्तान. एंड फाइनली भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर यह जीत अपने नाम तय कर ही ली.
0: ऑफ कोर्स, और जीत हमें मिली है सॉफ्ट टेनिस में भी. आध्या तिवारी एंड जे मीना, तीन मैचेस थे आज, मंगोलिया को हराया, कंबोडिया को हराया, बट साउथ कोरिया से हारने के बावजूद भी इंडिया हैज फिनिश्ड सेकंड इन द ग्रुप एंड दे हैव एडवांस्ड टू द राउंड ऑफ 16. सो सॉफ्ट टेनिस इज समथिंग व्हिच द इंडियंस कुड गेट अ मेडल इन द फ्यूचर.
1: जी, और अब थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक खबर आपको दूंगी स्विमिंग की दुनिया से, बिकॉज धनुष सुरेश मिस्ड आउट ऑन द मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल, फिनिशिंग 22nd ओवरऑल विद द टाइम ऑफ 1:03.46, दैट लीव्स श्रीहरि नटराज एज इंडियाज ओनली स्विमर इन द फाइनल टुडे विद द मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल स्टिल टू कम. एंड देर आर मेनी मोर, as we say, swimming events lined up for the day, but as we say, the day has just started and we are hoping this is going to turn out to be one of the best days in the early start of the Asian Games 2026. With that, for me right now, Abhinav aur mujhe Sakshi ko dijiye ijazat. Hum aapke liye live updates laate rahenge with the next update coming at 10:30 AM on Akashvani.
2: Shunto 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi.

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ, थोड़ी सी बातें और बहुत सारे गानों के साथ एक बार फिर पॉपी आ गई है 107 एफएम रेनबो पर, जहां आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। वैसे गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग कोलकाता, गुड मॉर्निंग कोलकाता और कोलकाता के आसपास के सभी इलाकों को मेरा ये सुबह का नमस्कार भेजते हुए एक खूबसूरत गाना सुनाती हूँ। और नॉर्मली तो मैं गुड मॉर्निंग स्टाइल में गाना सुनाती हूँ, लेकिन नहीं, चलिए आज का जो दिन है उसे ध्यान में रखते हुए एक हक की बात करते हैं और हक को याद करते हुए ये रोमांटिक ट्रैक सिर्फ और सिर्फ हमारे सभी दोस्तों के लिए पॉपी की तरफ से।

जी बिल्कुल, हम भी तो यही कहते हैं कि सबको हक है कि हर कोई शांति से जिए और जीवन में अशांति नामक वाला जो फैक्टर है वो कभी भी ना आए। लेकिन क्या जिंदगी में, असल जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, खास करके जब हम बात करते हैं पति पत्नी के बीच या एक कपल के बीच या दो लवर्स के बीच या वुड बी कपल यानी कि फियांसे के बीच होता क्या है? दरअसल देखिए, शादी से पहले लोग कहते हैं कि जोड़ी जो है वो ऊपर से बनती है, और शादी के बाद पता चलता है कि जोड़ी ऊपर से तो बनती है पर झगड़े का जो सॉफ्टवेयर है वो नीचे इंस्टॉल हो जाता है। अब समझ लीजिए घर में एक ही टीवी है, जी हाँ घर में एक टीवी है लेकिन लोग दो। अब एक को क्रिकेट देखना है, दूसरे को हर रोज की टीवी सीरियल्स, तो ऐसे में वो जो तीसरा विश्व युद्ध है शायद यहीं से शुरू होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी ने कहा सुनो आज क्या बनाऊं, पति कहता है कुछ भी बना दो। पत्नी बना भी देती है, भाई उसने कहा है कुछ भी। अब पति वो थाली में जो परोसा हुआ खाना देखकर बोलता है ये क्यों बनाया। इस सवाल के बाद जो चुप्पी लगती है उसे ही विश्व शांति कहते हैं, उससे पहले जो होता है वो अशांति होती है। पति का पहला प्यार उसका फोन, पत्नी का पहला प्यार शक उसका फोन, दोनों रात भर फोन को ही देखते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि एक प्यार से देखता है दूसरा शक से देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हर किसी को हक है एक शांति भरी जिंदगी जीने का। तो इस शांति भरी जिंदगी में जो अशांति आती है उसको कैसे भगाया जाए, वैसे आज ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है वो हम जरूर बताएंगे। भाई वजह तो है, कोई ना कोई खास वजह तो है, तो ठीक है वो वजह हम इस गीत के बाद आपको बताते हैं। फिलहाल अगला गीत सुनते रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं म्यूजिकल प्रोग्राम नॉनस्टॉप गपशप पॉपी के साथ ओनली ऑन 107।

ये बात, ये सिनेरियो, ये पिक्चर होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद बात वो कहते हैं ना कि पासा पलट जाता है और बातें कुछ और हो जाती हैं। और ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्लोबली, जी हाँ, इंटरनेशनली आज विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है। तो आज मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम वो कहते हैं ना कि ग्लोबली जब बात करते हैं तो बहुत सारी बात करते हैं, देश के बारे में करते हैं, बहुत सारे देशों के बीच के शांति वार्ता के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्यों ना आज मैं उस शांति के बारे में बात करूं जो हमारे हर घर में होनी चाहिए, ताकि वो जो क्योंकि ये जो युद्ध होता है, घर वाला जो युद्ध होता है, वो ना विश्व युद्ध से भी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में आज मुझे लगा कि जिक्र करूँ। 2213 1 पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा वो हॉटलाइन नंबर एकदम आपके लिए खुला हुआ है और आप भी हमें बता सकते हैं कि इस शांति को किस तरह से बरकरार किया जा सके या क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसीजर हैं जो आप फॉलो करते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा शांति रहती है। ऐसा नहीं है, किसी न किसी बात पे किसी न किसी का कभी न कभी दिमाग तो उखड़ जाता ही है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं उसको जानने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। तो बने रहिए, साथ रहिए और प्लीज़ आके मुझे उस जो मंत्र है, वो जो गुरु मंत्र आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, उसको शेयर कीजिए ओनली ऑन 107 FM रेनबो पर, पॉपी के साथ और हमारे सभी दोस्तों के साथ।

0: शान और अलका की आवाज में खुशी फिल्म से आपने सुना ये गीत, और देखते हैं कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शोभिक शर्मा बोल रहा हूँ दीदी, कस्बा से।
0: हाँ शोभिक, कैसे हो?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे आज बर्थडे है।
0: ओह हैप्पी बर्थडे शोभिक।
1: थैंक यू दीदी।
0: हाँ
1: आपने जो टॉपिक

0: दिया है। देखिए दीदी, मेरे तो शादी नहीं हुआ, मेरे जीवन साथी जो गर्लफ्रेंड जो है, जब भी कोई हम लोग का जो ओ, ओ, ओ, जो बोलता है अशांति जब भी होता है ना, मुझको मैं सबसे बड़ा जो होता है वो जो भी देखता हूँ, जो कभी झगड़ा झाटी जब भी हो जाता है ना, वो सबसे पहला मैं सॉरी बोल देता हूँ। कभी इसके बाद कोई मैं कहता हूँ जो उसके बाद बारे झगड़ा झाटी और भी बारे कभी कभी मान विमान तो हो जाते हैं, हाँ झगड़ा झाटी होता है। मैं पहले मेरे साइड में मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरे गुना जो है मैं कर लेता हूँ।
1: मतलब पहले हाथ उठा देते हो। अच्छा शोभ, एक बात पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा पर्सनल मैं जा रही हूँ, ये इसीलिए, ये पर्सनल को जनरल बनाने के लिए, नॉर्मली टॉपिक क्या होता है, वो जो अशांति का जो वजह है वो क्या होता है?
0: अब पहले मैं छोटा सा एक बोलूंगा, कभी कभी हम लोग इतना बिजी रहते हैं, हम लोग कभी कभी फोन करना उसको भूल जाते हैं, जो हम लोग का जो पार्टनर जो होता है ना, दिन में कभी कभी उसका ख्याल लेना, मैसेज करना, छोटा सा कोई मैसेज देना, वो हम लोग भूल जाते। सबसे बड़ा जो दीदी, हम लोग कभी कभी मेरा जो हम लोग का जो पार्टनर है, हम लोग का एकदम शिकार करते हैं, हम लोग जो छेले जो है आदमी जो है ना, हम लोग का जो हमारा पार्टनर जो है जो भी है उसका बर्थडे भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग का गलती हो जाता है, इतना बिजी रहता है, उससे दीदी वहां से दीदी झगड़ा झाटी शुरू हो जाता है।
1: ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। वैसे शोभिक, आजकल मोबाइल में ना फीचर्स है, बहुत कुछ है, इवन जो सोशल साइट्स है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है, यार कैसे भूल जाती हूँ इतना इम्पोर्टेंट दिन, ये तो बहुत बहुत गलत बात है। और हाँ कहो, फिर मैं बोलूंगी। हाँ कहो।
0: एकदम दीदी, आपने जो जो फीचर्स जो बोला है स्मार्टफोन में जो है वो है, होता है, लेकिन हम लोग को कभी कभी वो जो सेव करना रहता है, जो डेट जो है ना, वो तो हम लोग भूल ही जाते हैं कब वो।
1: बहुत बहुत बड़ी गुनाह है यार ये गलती नहीं है, गुनाह है। जो इंसान तुम्हारे बारे में हमेशा सोच रहा है, मतलब ख्वाबों में हकीकत में हर समय तुम्हें लेके है, उसका बर्थडे भूल जाना ये गुनाह है। तो चलो, तुम स्वीकार कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है कि यू सबमिट। ये जो बात होता है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम अगर गलती करते हैं तो उस गलती का स्वीकार जो है कर लो। और वैसे भी देखो, जो महिलाएं होती हैं ना, उनका दिल बड़ा नाजुक सा होता है, तो वो बहुत आसानी से आपको माफ़ कर देंगे, और वो तो जग को माफ़ कर देती हैं, और तुम तो सबसे करीब हो, मतलब जो भी उसका जीवन साथी है वो सबसे करीबी इंसान है, तो उसको माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये निहायत बहुत गलत बात है कि हम ऐसे ऐसी चीजों को कैसे भूल सकते हैं। वैसे ये जो भी बात थोड़ी देर पहले कही शोभिक ने कि हम भूल जाते हैं, काफी लोग भूल जाते हैं दिन में, कहीं जब हम बाहर रहते हैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, तो एक छोटा सा मैसेज, कभी कभी ना एक छोटा सा आई लव यू भेज दो, एक इमोजी भेज दो ना, तो वो पता नहीं दिल को कितना सुकून पहुंचाता है। तो ये मंत्र मेरे तरफ से है, शोभिक ने मंत्र दिया कि वो झट से, मतलब बिना कुछ सोचे सॉरी कह देता है। आप क्या करते हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। मेरा एक छोटा मंत्र है, कभी कभी दिन में एक छोटा सा थोड़ा सा टेक्स्ट भेज दो, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इट्स जस्ट हार्डली अ मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स, लेकिन वो जो 10 सेकेंड आपके जो सबसे करीबी इंसान के पास पहुंचता है ना, बस उसका दिल जो है वो गार्डन गार्डन खुशी खुशी हो जाता है।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to the 10:30 AM update of the ongoing live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026. और दोस्तों आज की खुशखबरी बस बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि शूटिंग की दुनिया से अभी तक कुल मिलाकर 4 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। और अगर आज की खास तौर से बात करें तो आज शूटिंग की दुनिया में हमने देखा किस तरह से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया एंड द बेस्ट न्यूज दैट केम वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअल शूटिंग के अंदर, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में हमने देखा कि हिमांशु ढिल्लो ने ही फिनिश्ड विद अ स्कोर ऑफ 252.4 फिनिशिंग सेकेंड, वो हमारे लिए लेकर आए सिल्वर मेडल। और वहीं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल बॉट अस द ब्रॉन्ज विद अ स्कोर लाइन ऑफ 230.9। चाइना के शेंग लिहाओ वन द गोल्ड मेडल विद 254.2। That was one of the best news over here with us today, this morning, Abhinav, indeed.
2: Of course, excellent news from the world of shooting, Sakshi, because shooting mein hame, team event mein bhi, 10 meters air rifle team event mein bhi, we got silver. Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. याद दिलाएं, हिमांशु ढिल्लो ने अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, तो शानदार शुरुआत हुई है उनकी और शानदार शुरुआत हुई है इंडिया की शूटिंग से।
1: जी, और अभिनव थोड़ा आप हमारे आज श्रोताओं को स्कीट के बारे में बताना चाहेंगे, जो स्कीट के भी शूटिंग के इवेंट्स चल रहे हैं, एक खुशखबरी वहां से भी थोड़ी दी जाए।
2: जी हाँ, शूटिंग के स्कीट मेंस टीम फाइनल में इंडिया के भवतेश सिंगल, AJS नरुका और मेहराज अहमद खान स्कीट के फाइनल में है। अभी 5th पोजिशन में करंट अपडेट है इंडिया का स्कीट में, तो होपफुली दे इम्प्रूव।
1: Yeah, long way still up ahead for our Indian shooters. लेकिन शूटिंग की दुनिया से अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं and let's also look at what happened in Regu today and not much good news over there because Japan ने वहाँ पर भारत को 3rd और final group B match में team Regu event के अंदर 2-1 से हरा दिया। Yes, the result meant that Japan won the overall tie 2-1 with India having taken the opening match earlier in the contest. तो शुरुआत में जीत एक राउंड के अंदर हमें हासिल तो हुई थी, लेकिन जापान अंत में बाजी मार गया भारतीयों के हाथ से।
2: जी हाँ, रेगू में तो इंडिया की अच्छी आज शुरुआत नहीं हुई है, मगर बॉक्सिंग में शानदार शुरुआत। मेन 70 kg राउंड ऑफ 32 में सुमित कुंडू ने अपना मैच जीता थाईलैंड के बैनजोंग सिनसिन के खिलाफ 5-0। जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिया इनको ऑफ 10 इन ऑल द राउंड, सो अ सुपर्ब स्टार्ट फॉर सुमित देयर एंड साक्षी, सुपर्ब स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन इन देयर हॉकी मैच।
1: इनडीड, एंड व्हाट अ स्टार्ट, प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि आज भारत एक बहुत ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग कमांडिंग परफॉर्मेंस दिखाएगा एंड दैट इज हाउ दे आर टर्निंग आउट टू बी अगेंस्ट इंडोनेशिया। बराज ऑफ गोल्स इंडियन वुमेन्स टीम की तरफ से हैव टेकन इंडिया टू अ 9-0 लीड इन द फर्स्ट हाफ। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ के बाद भी जब खिलाड़ी वापस आए हैं तो भारतीय खिलाड़ियों ने फिर से अपना दबदबा दोस्तों दिखाना शुरू कर दिया है। 2-0 की लीड ले चुके अगेंस्ट इंडोनेशिया। ऋतुजा पिस्ला, लारे सेमी, साक्षी राणा आर गोल स्कोरर्स फॉर द डे। अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कमांडिंग स्टार्ट बाय इंडियन वुमेन हॉकी टीम।
2: जी हाँ, हाफ टाइम पे 6-0 स्कोर है इंडिया और इंडोनेशिया का हॉकी मैच में। मगर कबड्डी की बात करें

0: जाए तो आज इंडिया का मैच जापान के साथ चल रहा है ग्रुप ए में। जापान की शुरुआत अच्छी थी बट इंडिया इज इन टोटल कंट्रोल राइट नाउ। 42-17 से इंडिया लीड कर रहा है आज जापान के अगेंस्ट। सो ट्रिमेंडस स्टार्ट फॉर इंडिया। एंड ऑफ कोर्स हम मेडल्स की बात करें तो हमारे पास एक और मेडल आज गारंटीड हुआ है, वो है ब्रॉन्ज मेडल। एंड साक्षी ट्रिमेंडस एफर्ट देयर बाय सुचिका तरियाल।
1: यस इंडीड, बट ऑल्सो अगर बात करें तो आज हम सभी ने देखा किस तरह से उनकी आंखें अभिनव नम हो गई थी लास्ट में, बिकॉज शी वॉज होपिंग टू नॉट गेट द ब्रॉन्ज बट रादर गो फॉर द सिल्वर फॉर इंडिया, बट वी हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज। अ वेरी हार्ट फेल्ट एफर्ट बाय द यंग गर्ल ओवर देयर फॉर इंडियंस, डेफिनेटली उनके लिए आगे उनका भविष्य भारतीय खेल और भारतीय दुनिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है। हियर्स टू हर मेकिंग इंडियंस प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ मेडल इज अ मेडल, एंड फॉर दैट हार्ट फेल्ट विल दैट शी बॉट फॉर इंडिया टुडे, हियर्स अस अप्लॉडिंग हर एफर्ट्स विद दैट। आई थिंक अभिनव अभी वक्त हो गया अपने श्रोताओं से इजाजत भी लेने का।
0: जी हाँ, एंड प्लीज ट्यून इन बैक विद अस एट 11:30 AM। आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा आकाशवाणी पे। इंडिया इज राइट नाउ 10th ऑन द मेडल्स टेबल, 6 मेडल्स हैव ऑलरेडी कम, होपिंग फॉर मच मोर। स्टे ट्यून टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

दिल्ली केंद्र से आपने सुना आईची नगोया जापान में आयोजित एशियन गेम्स के ताजा तरीन अपडेट्स। और चलिए बैक टू आर प्रोग्राम, जिसे आप जानते हैं नॉनस्टॉप गपशप के रूप में, तो वो कार्यक्रम एक बार फिर से जारी है और हम आपके साथ रहेंगे 11 बजे तक। फिलहाल कार्यक्रम का वो कहते हैं ना, एक इंटरवल के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

0: प्रवीण भारद्वाज और अनु मलिक के कॉम्पोजिशन में, जी हाँ, कलमबद्ध किया था प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत से सजाया था अनु मलिक। इस गीत में ना अजीब सी मिठास है, मतलब, और साथ में श्रेया की जो वो चाशनी वाली आवाज़ एक अजीब सा जादू करती है। वैसे जादू करने के लिए हमारे दोस्त आ चुके हैं और मैं तो ये कहूँगी, चलिए मैं नहीं कहूँगी, पहले उनको कहने देते हैं, फिर अपनी बातें बताते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग पॉपी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? जी स्वागत है, कहिए आज किस विषय में आप क्या खास बातें कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए और इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए।
0: जी थैंक यू।
1: जब रुक जाता है वो तब उसका मैं एक बार जानता हूँ।
0: अच्छा, वो रूट जाता नहीं, वो रूट जाती है। वो रूट जाती है,
1: ठीक है,
0: सॉरी।
1: तो मेल फीमेल में
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी जरा मजाकिया अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, आप जारी रहिए।
1: नहीं नहीं, मैं तो बंगाली हूँ इसीलिए वो गलती हो जाती है। जब रूट जाती है तो उसके लिए उसका जो पसंद हुआ सामान मैं लेकर ले जाता हूँ, साड़ी या कुछ ऑर्नामेंट या कुछ उसका मन कुछ हो जाए, इसी तरह सामान लेकर उसका हाथ में जब देता हूँ रूट बदल कर वो शांति ही शांति हो जाते है।
0: अच्छा, यानी कि आपको आपका जो तरीका है वो है ब्राइब करना, यानी कि घूस देना। अच्छी तरीके से आप, अच्छा, आप ना मेरे को ना अपने वाइफ का नंबर दे दीजिएगा तो मैं उनको बोल दूंगी कि आप अक्सर, मतलब बेवजह भी रूठ जाइए, क्योंकि आपके रूठने पर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। गुड, अच्छा लगा जानकर कि इनका जो तरीका है वो गिफ्ट्स देना। वैसे देखिए, हर किसी को किससे अच्छा नहीं लगता गिफ्ट देना, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो फंडा है कि रूठने पर ही हम गिफ्ट दें, ये शायद थोड़ा, मतलब इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना है कि कुछ नहीं, 15 दिन में, 1 महीने में अगर छोटे छोटे गिफ्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब यू डोंट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, थोड़ा सा फूल ही ले गया, एक गजरा ही लेकर

चले जाएं, या छोटे छोटे एक एक चॉकलेट का टुकड़ा, एक वो होता है ना अलग अलग कंपनीज की, वो एक लेकर जाएं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये घूस नहीं है, ये कहने का तरीका है कि यस आई केयर फॉर यू, आई लव यू। तो ऐसा होना चाहिए रिश्ता। वैसे मैं एक बात बताऊं कि ये जो हम सुनते हैं वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, ये देश वो देश लड़ रहा है और पता नहीं कितने सैनिक वहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन आज के दिन में हर इंसान सैनिक है, हर इंसान सोल्जर है, और वो सोल्जर किस तरह से अपना जंग जीतता है, आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिए, साथ रहिए, अभी भी 15 मिनट हैं हम आपके साथ, देखती हूँ मैं कितनों के साथ बात कर सकती हूँ। फिलहाल अगला गीत सुनाऊंगी आपको, फिल्म है, फिल्म का नाम बाद में बताते हैं, इश्क है तुमसे, इश्क है जिंदगी। तो आइए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

बिल्कुल, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ समीर जी। हाँ, गीतकार समीर से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि दर्द दिल की दवा सिर्फ सिर्फ सिर्फ दिलदार है, और उस दिलदार को खुश रखने का जो बीड़ा है वो आप पर है। जी हाँ, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। ये दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपने ज़िंदगी का जो इक्वेशन है वो बनाए रखे, और ये तभी संभव है जब आप में पेशेंस का जो लेवल है ना उसको थोड़ा हाई करना पड़ेगा। वो जो आपका जो गर्म हो जाने का जो पारा है उसको डाउन करके रखिए और पेशेंस के लेवल को ज़रा ऊपर करके हमेशा रखिए, ताकि इक्वेशन बनी रहे, ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे। और स्टूडियो की घड़ी 10:52, अब वक्त है मुझे आपको बता देने का कि आज के दिन की खासियत क्या है। आपको बताऊं कि जहां पूरा वर्ल्ड, जहां पूरी दुनिया विश्व शांति दिवस मना रही है, वहीं साथ में आज विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जा रहा है। ये जो अल्जाइमर है ये है क्या? बहुत लोग, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि ये एक बीमारी है, ये एक दिमाग की बीमारी है जिसमें याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये डिमेंशिया का सबसे आम कारण है, और देखा गया है कि लगभग 60-70% केसेस इसी के होते हैं। दुनिया में आज के दिन 55 मिलियंस से ज़्यादा लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं। होता क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, वो जो हाल की जो बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, और एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, चीज़ें गलत जगह पर रख देते हैं, और समय और जगह या जो एवरीडे जो साइकिल है, सुबह को शाम समझ लेना, शाम को सुबह समझ लेना, और मूड में, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा बदलाव आता है तो मूड में, व्यवहार में भी बदलाव आता है। और इस दिन का मकसद जो है वो डर फैलाना नहीं, जागरूकता फैलाना है। खास करके हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बीमारी से त्रस्त हैं, तो उनके साथ हमेशा हमेशा ज़रा नरमी से, ज़रा पेशेंस, यहाँ पर भी समझ लीजिए, अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेते हैं तो ज़िंदगी का जो जंग है वो आपने

जीत लिया। जी हाँ, यू हैव वन योर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर ऑफ लाइफ। और बड़ों की जो छोटी भूल है वो उसे हमेशा ये समझ के रखना है कि उसे डांटना नहीं, उन्हें समझाना है। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो लाइफ का जो ग्राफ है वो एक बार एक पॉइंट पर उठने के बाद फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो मतलब हम बचपन से जवानी पर जाते हैं और जवानी से जब बुढ़ापे में आते हैं ना, तो वो बिल्कुल बचपना एक बार फिर से आ जाता है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए उनसे बातें करनी है, पुराने फोटोज़ दिखाइए, हल्का फुल्का कभी कभी पढ़ने की लिखने की कहानी सुनाने की बात कीजिए, म्यूज़िक में इन्वॉल्व रखिए। और ये जो लगातार भूलने की जो बीमारी है, इसके लिए किसी खास न्यूरोलॉजिस्ट से, जो आपके सेंसेस को ट्रीट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से आप ज़रूर संपर्क करें। अल्जाइमर को अक्सर द लॉन्ग गुड बाय कहते हैं, क्योंकि आप अपनों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। इसलिए इस वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर एक ही संदेश है कि शर्म या झिझक मत रखिए, जल्दी जांच कराइए और याददाश्त जो धीरे धीरे जाने को है उसे पकड़ कर रखिए। शायद उस पकड़ में अपनों का प्यार सब कुछ मिला हुआ है, और यही जिंदगी को बेहतर बनाती है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी 10:55, एक खूबसूरत गीत के साथ पॉपी एक बार फिर से आपसे इजाज़त लेती है। लेकिन हाँ, हमारी मुलाकात होगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद FM गोल्ड पर। फिलहाल 107 FM रेनबो से टाइम टू से गुड बाय, टाइम टू वाइंड अप। वंस अगेन हैव अ गुड डे।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द एशियन गेम्स फ्रॉम आईजी नगोया। और खुशखबरी है भारत के लिए, भारत के कबड्डी टीम ने धमाकेदार शुरुआत करी है। जापान वर्सेस इंडिया मैच में 49-24 वाज द फाइनल स्कोर। ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन टीम, सो एन एक्सलेंट स्टार्ट। आपके साथ हैं अभिनव पुंशी एंड मेरे साथ हैं साक्षी मानवाल। एंड साक्षी, ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द हॉकी अरीना।
2: इंडीड अभिनव, खुशखबरी का सिलसिला आज जारी रहेगा और रहना चाहिए, बिकॉज भारत ने आज इंडोनेशिया को हरा कर इन अ वेरी कमांडिंग एंड कॉन्फिडेंट मैनर 17-1 से विक्ट्री को अपने नाम कर लिया इन द वुमेन्स हॉकी मैच। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट इंडिया हैड ऑल्सो डिफीटेड उज्बेकिस्तान रिसेंटली इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स एंड दैट वॉज 19-0। वन इंपॉर्टेंट नेम दैट स्टूड आउट इन द लास्ट गेम एंड ऑल्सो टूडे वॉज दीपिका सहरावत। लेट्स रिमाइंड listeners over here that Deepika Sehrawat had scored a record-breaking 8 goals, setting a high for individual goals in the women's hockey match at the Asian Games last time in the match against Uzbekistan. And today also she proved to be a very important contributor in the goal-making for India, along with Sunilita Topo, Ruturaj Bissal, Sakshi Rana, Salima Tete and Navneet Kaur, amongst other Indian goal scorers. Abhinav.
1: Excellent news from Kabaddi as well as the hockey arena. Magar soft tennis mein disappointment, Aditya Tiwari aur Jay Meena. Performance achhi thi apne group stages mein, Mongolia ko haraya, Cambodia se ko bhi haraya, matlab South Korea se haarne ke baad round of 16 match mein India fell to defeat against the Philippines 2-5, to quarter finals mein nahi pravesh kar paye Aditya Tiwari aur Jay Meena. Magar ab hum jaate hain shooting ki taraf and shooting se update denge aapko Sakshi.
2: Ji, thank you Abhinav. Aur shooting ki agar hum baat kare तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग के अंदर आज पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर टीम इवेंट में उन्होंने अपना आज का दिन समाप्त किया है। वहीं अगर हम मेंस टीम इवेंट की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पांचवें स्थान पर पहले दिन की समाप्ति पर आज अपना प्रदर्शन समाप्त किया है। टीम स्टैंडिंग्स में चाइना रही नंबर एक पर 143 के साथ, कजाकिस्तान रहा नंबर दो पर 138 पॉइंट्स के साथ, और वहीं भारत रहा 132 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर पहले दिन की समाप्ति पे।
1: जी हाँ, स्कीट इवेंट तो तीन दिन तक चलेगा, मगर शूटिंग में मेडल्स आए हैं। और क्या मेडल्स, क्या परफॉर्मेंस! पहले शुरुआत हुई थी आज दिन में 10 मीटर एयर राइफल तीन इवेंट में, जिसमें रुद्रांश पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने ने इंडिया को एक सिल्वर मेडल दिलाया। और बस वही नहीं, उसके बाद 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मेंस में रुद्रांश पाटिल को ब्रॉन्ज और हिमांशु डिलन, जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, सिल्वर मिला। और पहली बार हमें 2026 में पोडियम में दो भारतीय दिखे, हिमांशु डिलन और रुद्रांश पाटिल। तो शानदार शुरुआत हमारी हुई है शूटिंग में।
2: यस इंडीड, एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन आवर शूटर्स, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग एज द एशियन गेम्स प्रोग्रेसेस फर्दर। लेकिन अब थोड़ा सा, एक छोटा सा अपडेट लेकर आते हैं एमएमए की दुनिया से भी, बिकॉज हमें तो आज पता है कि सुचिका तारियाल, जो भारत की तरफ से एमएमए में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, शी हैड लॉस्ट द सेमी फाइनल ऑफ द वुमेन्स 60 किलोग्राम अगेंस्ट अ सिंगापुरियन अपोनेंट हुन हुई त्यो। दो एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एबल टू ब्रिंग इंडिया द कविटेड ब्रॉन्ज मेडल, बट यहां पर निराशाजनक खबर जो आई, एंड एज पर रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पोरिंग इन, द मैच वॉज अवॉर्डेड टू द Singapore fighter, the Indian camp protested and eventually the match was called a draw. अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भारतीय कैंप की तरफ से प्रोटेस्ट आई, तो इन द इवेंट ऑफ अ ड्रॉ द रूल दैट हूएवर इज लाइटर किक्ड इन, एंड सुचिका, जो कि सिर्फ 700 ग्राम ज्यादा थी वजन में अपने अपोनेंट से, वो इस मैच को हार गई। और एज पर रिपोर्ट्स शायद यही वजह रही कि भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर संतुष्टि करनी पड़ी। शायद इसी वजह से आज वो काफी निराशाजनक, निराश भी दिखी थी और उनकी आंखों से आज अभिनव काफी ज्यादा आंसू भी गिर रहे थे।
1: जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग देयर फॉर सुचिका। मगर मेडल्स टैली में भारत अब 10th पोजीशन पे है विद 6 मेडल सो फार, 4 silvers and 2 bronze. Shooting have been sensational for India and lot more medals expected. Aur yaad dilaye aapko sare updates Aichi Nagoya se lekar hum aayenge every hour. Agla update hoga 12:30 PM pe. Please stay tuned to Akashwani, hoping for more medals from the Indian contingent.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: शुंचो 107 FM रेनबो शात शुरे शारदी।

0: প্রসঙ্গ কথা, এবং কথার যে এত সৌন্দর্য, যদি না কথা বলতাম তাহলে হয়তো সেটা এতটা বুঝতাম না, জানি না কি হতো। তবে ভালোই আছি, কথাই আছি, আমরা কথাতেই থাকবো, ফিরে আসবো, কিন্তু এই মুহূর্তে একটি ছোট্ট বিরতি নিতে হবে।
1: এশিয়ান গেমস 2026 আইচি নাগোয়া।
2: आपका स्वागत है एशियन गेम्स अपडेट्स ऑन आकाशवाणी। आपके साथ हैं साक्षी मानवाल और मैं अभिनव पुंछी, और लेटेस्ट खबरें हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं बैडमिंटन के अरीना से, जहां लक्ष्य सेन इंडिया के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है। बांग्लादेश के अजमान के खिलाफ 21-4, 21-12 पहला मैच जीता, और दूसरे मैच में आयुष शेट्टी गौरव सिंघा के अगेंस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 21-4 पहला सेट उन्होंने जीता, और दूसरी गेम में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। तो बैडमिंटन में आज इंडियन मेन्स टीम ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी, और हमारे साथ है साक्षी। एंड साक्षी, शूटिंग की खबरें से हमें प्लीज़ अपडेट करिए।
3: जी, और पहले तो अभिनव शुक्रिया फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन, जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ, और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ। तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं। वहां पर रायजा ढिल्लों ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का, और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर। वहीं परिनाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया। तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ, कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ, और भारत की महिलाएं रही तीसरे स्थान पर 132 अंकों के साथ। अब अगर हम मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूँ आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नारुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ। अब आप ये सोचिए, और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ। कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से, अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है। तो ओवरऑल मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दे अभिनव।
2: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, एंड दे बीट जापान 49-24, कॉम्प्रिहेंसिव विन। और आईची नगोया एशियन गेम्स में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे मेंस कबड्डी टीम से, और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारे विमेन्स हॉकी टीम से, जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे हैं।
3: जी हाँ जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया, अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था। एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मैच में, पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच। और आज भी उनका जो योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ वो भी काबिले तारीफ रहा। उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है ऋतुजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी, और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें।
2: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का। मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन और पार्थ माने, और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर

0: मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में जबरदस्त पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू पे एक और मेडल वो भी सिल्वर। एंड साक्षी एमएमए की दुनिया में भी हमने कमाल दिखाया।
1: जी हमने एमएमए की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर एमएमए की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के सारे चाहने वालों के मन में एक हल्की सी कसक रह गई हो, लेकिन मुबारकबाद तो देनी बनती है क्योंकि सुचिका तारियाल हमारे लिए भारतीय सारे फैंस के लिए आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इसके ऊपर और बातचीत करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे 1:30 बजे आकाशवाणी पर विद द ऑन गोइंग लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
2: শুনছো 107 FM Rainbow, সাত সুরে সারা দিন, সাত সুরে সারা দিন। কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 FM Rainbow তে। গানদরিয়া গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अभिनव, जो आज

0: हम दोनों आपके लिए एशियन गेम्स के बीच में सारे लाइव अपडेट्स लेकर आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इस पर्टिकुलर अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। बैडमिंटन की दुनिया में भारतीय शटलर्स ने आज बैडमिंटन में भारत के लिए एक शानदार प्रदर्शन देकर भारतीय शटलर्स और बैडमिंटन की दुनिया में आगाज दिया है। जी हाँ, ऑल द थ्री शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी एंड किदांबी श्रीकांत, ऑल थ्री ऑफ देम वेंट ऑन टू विन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स एंड देयरबाय हेल्प्ड इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स बाय गेटिंग अ 3-0 क्लीन विक्ट्री। वेरी स्पेसिफिकली लक्ष्य सेन डिफीटेड आयमन जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12। आयुष शेट्टी वेंट ऑन टू डिफीट गौरव सिंघा 21-4, 21-13, thereby putting इंडिया इन अ कमांडिंग पोजिशन ऑफ 2-0 ऑलरेडी एंड also विनिंग पोजिशन। एंड फाइनली श्रीकांत किदांबी केम इन टू प्ले एंड डिफीटेड हिज अपोनेंट अल अमीन जुमार 21-15 and 21-9। इंडिया नाउ फेसेस जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। अभिनव,
1: शानदार शुरुआत भारतीय बैडमिंटन टीम से। और अब बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग अरीना में तैयार रहिए क्योंकि श्रीहरि नटराज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में। श्रीहरि नटराज स्टार्टिंग पोजीशन उनकी 9th है, मगर बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से भारत को एक मेडल दिलाने के लिए। क्या आज श्रीहरि नटराज का दिन होगा? सारी नजरें हमारे इंडियन स्विमर पर है
0: जी। और श्री हरि नटराज को सारे ही भारतीयों की तरफ से विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गिविंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टुडे। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस आल्सो, टेबल टेनिस को दुनिया को बता दे कि भारतीय महिलाओं ने भी आज कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से परास्त करके वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई को जीत कर अपने नाम कर लिया। श्री जाकुला ने जीत हासिल करी पातिमा खान को हरा कर 11-4, 11-4, 11-5 से। और फाइनली भारत ने ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आगे बढ़कर अपने नाम को अर्जित करवाया क्वार्टर फाइनल्स की रेस में। एक बहुत जरूरी नाम जो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, कहूँ अहम नाम दोस्तों, वो है सिंड्रेला दास का, हु वॉज ऑन अ एशियन गेम्स डेब्यू टुडे। और उन्होंने कलसुम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक कमांडिंग पोजिशन में पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा किया था। और इसी बुनियाद पर भारत को पहले 2-0 से एक एडवांटेज मिल गई थी अभिनव, जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीजाकुला ने फाइनली 3-0 से पाकिस्तान को हराकर ये टाई अपने नाम करवा लिया।
1: और जो विमेंस टीम ने करा है, क्या मेंस टीम यही करेंगे आज? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है आईची नगोया में एशियन गेम्स में। ये ग्रुप एनकाउंटर है 3:30 बजे इंडिया और पाकिस्तान एक्शन में देखेंगे। याद दिलाएं, इंडियन मेंस टीम हारे थे ईरान के खिलाफ, तो आज क्या इंडिया कमबैक करेगी?
0: Well, hoping for the best, लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज और क्या क्या इवेंट्स आप देख पाएंगे आज के दिन में। पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में वुशु के साथ, जिसमें वुमेन्स सैंडा के 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रोशी बिना देवी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दोपहर 2:30 बजे नजर आएंगी। और वुशु के अंदर ही मेन सैंडा 56 किलोग्राम कैटेगरी में आर्यन भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे दोपहर 2:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर।
1: और आज कबड्डी में इंडियन मेंस टीम ने तो जापान को हराया 49-24, शानदार शुरुआत भारतीय मेंस कबड्डी टीम की। मगर विमेंस कबड्डी टीम भी एक्शन में देखेंगी 4:15 बजे, जब उनका मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। तो हम चाहेंगे कि आज कबड्डी में क्लीन स्वीप हो, क्योंकि आज इंडिया का मेडल्स टैली तो शानदार रहा है। एंड इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एज फार एज द मेडल्स आर कंसर्न्ड।
0: यस इंडीड, एंड व्हेन वी से ऑफ मेडल्स, शूटिंग की दुनिया को हम क्यों भूलें, सबसे ज्यादा मेडल्स तो अभी तक उसी इवेंट के अंदर से हमारे पास आए हुए हैं। 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, जिसमें 2 सिल्वर कल हमारे शूटर्स ने अपने नाम किए थे और 2 सिल्वर आज हमारे शूटर्स ने अपने नाम किया, और उसके साथ साथ 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को दिलवाया। कुल मिलाकर शूटिंग में अभी तक है 5 मेडल्स। लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि भारत की अंक तालिका में जो अभी स्टैंडिंग है वो है 10वें स्थान पर। तो सफर अभी काफी लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे अभिनव बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे इस एशियन गेम्स 2026 के अंदर।
1: जी हाँ, सारी अभी मगर निगाहें हैं श्रीहरि नटराज पे, उनका कंपटीशन शुरू हो गया मेंस 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल पे। श्रीहरि नटराज पूरा अपना जोश दिखा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रीहरि नटराज नहीं कोई भी मेडल जीत पाए। और ये लेटेस्ट अपडेट है, अब हम आकाशवाणी में वापस आएंगे 3:30 बजे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आईची नगोया एशियन गेम्स।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथ।

0: यह कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
0: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
0: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
0: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
0: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
0: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
4: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
5: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: लेकिन माँ सुनो ना।
5: अरे बेटा, मैंने कहा।
4: अरे सुनो, उफ़ माँ।
5: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
4: माँ, उफ़ कोई सुनता भी तो नहीं है। मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
3: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की, उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
2: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
5: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
4: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
5: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
4: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
5: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
4: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
5: बेटा
4: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
5: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
4: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
5: लेकिन क्या बेटा?
4: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
5: अरे बेटा सुनो तो
4: माँ, एक लालटेन दे दो।
5: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
4: अरे माँ लालटेन दे दो।
5: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
4: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
2: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
4: माँ माँ माँ,
5: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
4: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
5: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
4: नहीं माँ, एक भी नहीं।
5: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
4: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी यह बात बताऊंगा।
5: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
4: हाँ माँ,
5: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
2: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
3: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
2: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
3: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
2: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
3: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
2: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके, और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
4: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
3: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
3: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
3: रक्कास,
2: नाचने वाला।
3: ताब,
2: ताकत बर्दाश्त।
3: हिंसा,
2: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
3: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
2: सवाल नंबर दो,
3: घड़ी की आवाज कैसी थी?
2: सवाल नंबर 3,
3: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
2: सवाल नंबर 4,
3: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है।

0: Asian Games Doha South with Aichi Nagoya.
1: स्वागत है आपका अपडेट्स के लिए फॉर एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। मेरा नाम है अभिनव पुंछी, मेरे साथ है साक्षी बनवाल। और खुशखबरी आई है वुशु के अरीना से, क्योंकि इंडिया की रोशिबिना देवी ने जीत हासिल करी है। राउंड ऑफ 16 मैच में उन्होंने मोचिका खातून को हराया विन बाय पॉइंट डिफरेंस। और याद दिलाएं आप सबको कि रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स 2022 में, और 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बस एक जीत की और जरूरत है रोशिबिना देवी को, और इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल गारंटीड है। और मेरे साथ है साक्षी।
2: जी अभिनव, थैंक यू सो मच। एंड गिवन द फैक्ट दैट आपने हमारे श्रोताओं को अभी खुशखबरी दी है, तो ये डेफिनेटली रीजन टू स्माइल है, बिकॉज अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज सुबह की शुरुआत में नायमन वांगशु फिनिश्ड एट द 15th स्पॉट इन द एशियन गेम्स वुमेन्स चैंगक्वान फाइनल विद 9.573 पॉइंट्स इन अ 16 स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहीं हांगकांग की हुई यू लिडिया शैम ने गोल्ड अपने नाम किया था 9.713 पॉइंट्स के साथ। तो जहां वुशु ने आज सुबह उतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं देखी भारत के एंगल से, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। और उसी में आर्यन भी अब आमने सामने आने वाले हैं शहजादा सफी के साथ इन द मेंस 56 केजी राउंड ऑफ 16 एट 3:50 PM टुडे, यानी अगले 20 मिनट में आप ये मुकाबला भी देख सकेंगे। अभिनव
1: जी हाँ, और बात करें एक बड़ी राइवलरी, द आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्लैशिंग राइट नाउ इन द टेबल टेनिस मेंस टीम इवेंट। इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप एफ का मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। हरमीत देसाई स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स मोहम्मद खान के अगेंस्ट। इंडिया की टीम में सत्या गणेशेखरन, मानव थक्कर, मनुष्या और पायस जैन है। याद दिलाएं इंडिया ने इंडोनेशिया को तो 3-0 हराया, मगर शॉक हुआ जब इंडिया ईरान से 3-0 हारी। और आज इंडिया को पाकिस्तान को हराने की जरूरत है अगले फेज में जाने की। तो क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी जो इंडियन विमेंस टीम कर चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान को अर्लियर इन द डे हराया था?
2: जी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आज, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हमारे चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इन द एशियन गेम्स 2026 आल्सो स्टे अलाइव। लेकिन आप स्विमिंग की ओर भी एक रुख कर लेते हैं हमारे प्यारे दर्शक श्रोताओं, और आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड डे फॉर आर इंडियन स्विमर्स, बिकॉज भारत की तरफ से श्रीहरि नटराज ने 10th स्पॉट पर फिनिश किया इन द मेन्स 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026, क्लॉकिंग 25.52 सेकेंड्स इन द 10th स्विमर मेडल रेस। और दूसरी तरफ ये भी बता दो आप सबको कि बाकी भी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका तो आज इससे भी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, चाहे हम बात करें ऋषभ दास, आकाश माने, हीर जितेश शाह या फिर धानुष सुरेश की, या फिर मेंस के जो 4x200 meter फ्रीस्टाइल रिले का मुकाबला भी जो होता है, हीट जो होता है, उसमें भी भारतीय स्विमिंग टीम साजन प्रकाश, अनीश सुनील, कुमार गावड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार, ये सब क्वालिफाई करने से, फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रह गए। तो ओवरऑल नॉट एट ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन स्विमर्स ओवर देयर। अभिनव
1: जी हाँ, स्विमिंग में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मगर कबड्डी में तो इंडिया ने धमाका मचा दिया, क्योंकि जापान के खिलाफ इंडिया ने जीत हासिल करी 49-24। जापान की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, मगर हमारी इंडियन टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके आगे तो कोई बड़ा नहीं। इंडिया ने एक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, 49-24 से जीत हासिल करी। और अब होने वाला है मुकाबला हमारी विमेंस टीम का, क्योंकि एट 4:15 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस ग्रुप ए का एक धमाकेदार इंकाउंटर होने वाला है साक्षी।
2: यस इंडीड, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, और वो आज इंडिया के एंगल से भी आखिरी मुकाबला होगा भारतीय रिप्रेजेंटेशन का एशियन गेम 2026 के अंदर। लेकिन अगर थोड़ा सा आज पीछे जाए और बात करें कि आज ऐसे कौन से और पल आए जहां पर हम सबके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी आ सकी, वो था बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पर हमारे इंडियन शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने भारत को जीत हासिल कराई, बांग्लादेश को 3-0 से हरा कर, और इसके साथ ही वो क्वार्टर फाइनल्स में भी प्रवेश कर गए, जहां पर अब उनका मुकाबला होगा जापान के साथ, जो कि बिल्कुल भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला है अभिनव भारतीयों के लिए।
1: जी हाँ, और हमारा होने वाला है

0: बहुत ज्यादा बड़े मुकाबले। आप स्टे ट्यून रहिए, एशियन गेम्स की कवरेज सिर्फ आकाशवाणी पे अपडेट के साथ हम वापस आएंगे 4:30 पे। इंडिया भी मेडल टैली पे 12th पोजीशन में, होपफुली ये टैली बढ़ते रहे।
1: होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ ईयर, बट एट द एंड वी कैन आल्सो से दैट इंडिया एंजॉयड अ सक्सेसफुल डे एट द एशियन गेम्स टुडे, हैविंग सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स सो फार। शूटिंग प्रोवाइडेड दो 3 ऑफ दोस मेडल्स, ऑफ कोर्स वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ सिल्वर वी हैड 4 मेडल्स, 4 silvers and 1 bronze, but overall a good day so far for the Indians.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, आज की परियोजना प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आदि कर्मयोगी योजना के बारे में आज आपको बताने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पहल की जो सरकार के काम करने के तरीके को ज़्यादा मानवीय, ज़्यादा तेज और ज़्यादा असरदार बनाने की कोशिश है, जो है आदि कर्मयोगी योजना। देखिए, किसी भी देश का प्रशासन तभी मजबूत बनता है जब उसके कर्मचारी लगातार सीखते हैं, समय के साथ अपडेट होते हैं। यही सोच इस योजना की नींव है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, iGOT कर्मयोगी, यानी अब सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, मोबाइल या कंप्यूटर पर ही सीखने का मौका, और ऐसे कोर्स जो सीधे उनके रोजमर्रा के काम से जुड़े हों। कैसे बेहतर संवाद हो, कैसे फैसले जल्दी लिए जाए, तकनीक का इस्तेमाल कैसे आसान बने और जनता के साथ जुड़कर काम कैसे किया जाए। और हाँ, ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, इस योजना का असली जोर है सोच बदलने पर। कर्मचारी सिर्फ फाइलें न संभाले बल्कि एक सेवक की तरह जनता की जरूरत को महसूस जरूर करें। इसलिए इसमें एथिक्स और पब्लिक सर्विसेज वैल्यू को खास जगह भी दी जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें सिर्फ केंद्र नहीं राज्य स्तर के लाखों कर्मचारी भी फायदा ले सकते हैं। और जाहिर है, जब कर्मचारी बहुत ट्रेंड हो तो इसका असर सीधे जनता तक पहुंचेगा। और आखिर में बस इतना कि आदि कर्मयोगी योजना प्रशासन को नए दौर की जरूरतों के हिसाब से ढाल रही है। धीरे धीरे सरकार का तंत्र रिजिड नहीं, सीखने वाला और रिस्पॉन्सिव बन रहा है, तो आगे वक्त के साथ बदलाव और साफ भी दिख रहा है। इसी के साथ आज की परियोजना प्रस्तुति बस यही।
0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
1: तो 203 का तड़का लेके मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त गाने से, जो है मोहित चौहान की आवाज में,

अधीक्षक एर आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 3/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाक घर भवन हावड़ा 3111-01 में गूगल मीट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल के संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतों का डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल यानी कि ईमेल आईडी है rmssbdn@gmail.com के ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें। इसके माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल हावड़ा 3111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपने ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि और समय पर गूगल मीट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 03326415-5989 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि के नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी डाक अदालत के बारे में एक विशेष सूचना। आगे बढ़ते हुए चलिए 3 का तड़का में सुन लेते मुस्तफा जाहिद की आवाज में ये जबरदस्त ट्रैक ब्लड मनी फिल्म से।

दोस्तों तीन का दरका में हम जबरदस्त गानों की बौछार फिलहाल तो लगाए हुए हैं और चलिए ब्लड मनी के बाद सीधे बढ़ते हैं हमारा अपन टू की ओर। जी हाँ, सुनेंगे तो फिर आओ का सेकंड 2.0 वर्जन, पर ये इस बार मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में नहीं, सुबोध शर्मा की आवाज़ में। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

नजर चलते चलते कार्यक्रम के आखिरी गीत तक हम पहुंच चुके हैं। सूर्य की घड़ी समय बता रही 3:55 और मैं पापिया हूँ आपके साथ, यानी कि अब थी 3 का तड़का में। और थोड़ी ही देर बाद वापस हम मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अब 3 का तड़का का समय समाप्त हो चला है, पर हमारी जो मुलाकात है वो वापस होने वाली है चाय एंड क्लासिक्स में FM गोल्ड पर ठीक 5:15 पर। तो हाजिर रहिएगा, बिल्कुल मैं तो हाजिर रहूँगी स्टूडियो में आपसे बातें करने के लिए, साथ ही साथ खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे हम साथ में। उसके बाद फिर 7 बजे से आज छाया लोक के अंतर्गत सुरों की महफिल तो है ही FM रेनबो पर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, यू ही है 107 FM रेनबो। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम, और अभी फिलहाल राजा नटवरलाल से बेनी दयाल की आवाज़ में ये आखिरी गीत।

0: শুনছো ক্যাফে কলকাতা,
1: ক্যাফে কলকাতা
0: 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা,
1: ক্যাফে কলকাতা।
2: নতুন নতুন নয় শপিং এর কথা হচ্ছে 9903653992 তে নতুন নতুন তুমি অনেক মেসেজ পাঠাবে আমাদের এই নতুন টপিকে, তাই জন্য একটা নতুন গান হবে না তা কি হয়।
3: 2026 কি আপডেট কা
4: এশিয়ান গেমস 2026 আইচি নাগোয়া।
5: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the ongoing Asian Games 2026 that we are bringing to you every hour on Akashwani. Dosto, main hu Sakshi Manwal aur mere saath yahan par maujood hai mere dear friend and of course co-host for the day Abhinav Punchi. And very quickly now moving on, sabse pehla sport jisko hum aaj cover karne wale hain, aapko batane wale hain is waqt ki pichle 1 ghante mein kya hua usme tha, wo hai wushu. More good news coming in for India in wushu. Aryan defeated Afghanistan's Shehzada Safi 2-0 in the men's 56 kg round of 16 to book his place in the quarterfinals. Ji haan, quarterfinals mein hum pravesh kar chuke hain. Wahin kuch pal pehle hi Bharat ki Roshibeena Devi had also advanced to the women's 60 kg quarterfinals, beating Bangladesh most khatoon by win by the point difference. Yani iska matlab ye hua Abhinav ki wushu ke quarterfinals mein Bharat ne apni jagah bana liye, chahe wo mahilaon ka ho chahe wo hamare aadmiyon ka ho, aur wo quarterfinals hone wale hain kal.
6: एग्जैक्टली राइट साक्षी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वुशु में अगर आप सेमीफाइनल्स में प्रवेश करते हैं तो गारंटीड ब्रॉन्ज है, तो बस एक जीत से दूर हैं हम दो ब्रॉन्ज मेडल्स गारंटी करने के लिए, बट हमारा तो मिशन गोल्ड का है। और इसलिए आज हमारी टेबल टेनिस की मेंस टीम ने आज ट्राइबल्स पाकिस्तान को 3-0 हराया। शानदार प्रदर्शन हमारी मेंस टीम का, याद दिलाएं मेंस टेबल टेनिस टीम प्रेशर में थी क्योंकि ईरान से वो हारे थे 3-0, तो अगर क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश करना था तो आज पाकिस्तान को हराना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो हरमीत देसाई ने शुरुआत करी, मोहम्मद खान को हराया 11-4, 11-3, 11-5, फिर सत्यन गणेशेखर ने हराया अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9, और प्रयास जैन ने मोहम्मद खान को हराया 11-2, 11-5, 11-7। इस जीत के साथ अब इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम

0: जाती है क्वार्टर फाइनल्स।
1: जी और कबड्डी की ओर भी अब रुख कर लेते हैं। महिला कबड्डी का मुकाबला आज होने वाला है। वैसे तो इसको शाम को 4:15 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ ही क्षणों में अब ये मुकाबला शुरू होता हुआ आप लोग देख सकेंगे। ये मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश की महिला कबड्डी के बीच में, जिसमें आपको ये भी बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी पिछले मुकाबले में ईरान से बुरी तरह से हारी थी। जी हाँ, 3-0 से ईरान ने भारत को हराया था। इसलिए आज भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो इस मुकाबले को जीतें और कॉन्फिडेंटली और कमांडिंग तरीके से जीतें। आपको ये भी बता दें कि भारत का जो ग्रुप है उसके अंदर भारत है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है। ईरान से हम हार चुके हैं, अभी बांग्लादेश के साथ अभिनव मुकाबला है, और अगर आज भी नहीं जीते तो करो या मरो वाली कहानी है उसके बाद जापान के साथ, और रास्ता मुश्किल नहीं होता है, सफर और कठिन ही हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए।
0: जी हाँ, प्रेशर इज ऑन द इंडियन वेमेन, मगर जैसे हमारा इंडियन कंटिजेंट एशियन गेम्स में दिखा रहा है आईची नगोया में कि इंस्पायर कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि आज इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने अपना जो इंकाउंटर था जापान के खिलाफ जीता 49-24 से। शुरुआत थोड़ी स्लो थी, बट उसके बाद क्या पेस पकड़ी और शानदार तालमेल था हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स का, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हमारी टीम ने जीते 49-24। और आज बस ये अच्छी न्यूज नहीं थी साक्षी, मेडल्स की भी तो आज बरसात हुई है शूटिंग से।
1: ऑफ कोर्स शूटिंग से आज मेडल्स की बरसात हुई है, बिकॉज आपको बता दें कि शूटिंग में आज हिमांशु ढिल्लो हमारे लिए सिल्वर लेकर आए, वहीं रुद्राक्ष पाटिल हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में। और क्योंकि हम शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी तक अगर मेडल तालिका की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी गेम में आए हैं वो है शूटिंग के अंदर ही। जी हाँ, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल की वजह से भारत की अभी जो मेडल टैली है उसमें कुल मिलाकर 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 5 तो शूटिंग में आए, और 6ठा मेडल जो आया है वो आया है सुचिका तारियाल की वजह से। जी हाँ, इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिस गर्ल वेंट ऑन टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंत में एक इमोशनल मोमेंट उसके लिए हो गया था, उनके लिए हो गया था, बिकॉज ऑफ हाउ दैट मेडल वॉज ग्रांटेड और द डिसीजन वॉज मेड, येट there is no taking away the fact that she made India stand tall with pride, stand tall with of course confidence and happiness, and made every Indian also happy because MMA के अंदर उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें कि India's medal tally receives a strong boost across multiple disciplines with the athletes delivering notable performances throughout the day and setting the tone for the rest of the games। और यहाँ से अब क्विकली आपको बताते थे भारत की स्टैंडिंग है 12वीं स्थान पर, जिसमें है 6 मेडल्स, ऑफ कोर्स 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, होपिंग दैट इंडिया टेंड्स टू परफॉर्म बेटर इन द कमिंग डेज। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ। 1 घंटे बाद दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात, फिलहाल के लिए बाय।
2: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: हॉकी में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो चुका है। ग्रुप ए का यह मुकाबला जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करी है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स बांग्लादेश। बाय द एंड ऑफ द हाफ टाइम इंडियन वुमेन वर लीडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश 21-10 जिया 21-10 से भारतीय महिलाओं को बढ़ोतरी मिली हुई थी। और हाफ टाइम के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी भी भारत का जो स्कोर है वो है 39-21, यानी बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा एक तरीके से निकलकर बाहर आ रहा है। सो फार बांग्लादेश ने फाइट तो अच्छी दी है भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन भारतीय महिलाओं के करीब कबड्डी की इस मैच में वो आ नहीं पाए। और एक छोटा सा करेक्शन भी करना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए कि जो कबड्डी के ये मैचेस हैं उसमें भारत के साथ जो उनके ग्रुप ए के अंदर इस समय पैड टुगेदर हैं वो है ईरान, बांग्लादेश और जापान। आज भारत का पहला मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के खिलाफ जो कि है बुधवार यानी 23 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में, और फाइनली उनका मुकाबला है जापान के खिलाफ 24 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में ही। मेरे साथ है अभिनव। अभिनव, गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम।
1: जी हाँ साक्षी, स्टनिंग स्टार्ट बाय द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम। और अगर मेंस कबड्डी टीम की भी बात करें तो दे आल्सो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट अगेंस्ट द होस्ट जापान। इंडिया ने जापान को हराया 49-24 हाफ टाइम पे। इंडिया वॉज लीडिंग 31-9। आशु मलिक और देवांग दलाल ने तो अपना कमाल दिखाया ही, और हमारे मेन कबड्डी प्लेयर्स मैच में ज्यादा एंट्री नहीं कर पाए, ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, रेस्ट कर रहे थे। और होस्ट के साथ थोड़ा सा इंडिया ने टेक इट इजी करा एज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन सुनील कुमार, मगर गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन मेन्स कबड्डी कंटिंजेंट। अब इंडिया और कोरिया का मुकाबला होने वाला है कल, जब हमारी मेन्स टीम चाहेगी थोड़ा मोमेंटम फिर से गेन करें। याद दिलाए इंडियन मेन्स भी है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो क्या इस बारी रिपीट होने वाला है? एंड साक्षी, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर अस फ्रॉम द विमेंस मैच, बिकॉज़ मुझे लग रहा है बस 20 सेकंड बाकी है और इंडिया कंफर्टेबली जीत रही है।
0: हां जी, इस मुकाबले में तो भारत की जीत तय ही है, निश्चित हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक ये मुकाबला समाप्त ना हो तब तक समाप्त होता नहीं है। लेकिन अभी अगर विमेंस टेबल टेनिस मुकाबले की भी बात करें तो वहां पर भी दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से आज हरा दिया। मैं बात कर रही हूं विमेंस टेबल टेनिस टाई मैच की, जो टीम मैच था इसमें श्रीजा अकुला ने भारत की टीम को जीत दिलाई आखिरी मुकाबले में, जहां उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराया। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया वाज एबल टू फिनिश एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो इस मैच के अंदर रहा, या मैं कहूं इस मुकाबले में रहा, वो था सिंड्रेला दास का। इट वॉज अ डेब्यू इन एशियन गेम्स दिस ईयर एंड शी बीट कलसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, जिसकी वजह से भारत को 2-0 से बढ़त मिल गई थी पाकिस्तान के ऊपर। और फाइनली कहते हैं ना कि द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वाज सर्व्ड बाय श्रीजा अकुला, जिन्होंने 3-0 से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलवा दी महिला टेबल टेनिस के टीम टेबल टेनिस टाई के अंदर। अब भारत का सामना होगा थाईलैंड के साथ कल इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज एनकाउंटर। वैसे तो भारत क्वालिफाई कर गया है, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से कल भारत थाईलैंड के साथ फेस टू फेस आने वाला अभिनव।
1: और जैसा हमने आपको प्रॉमिस करा था वो ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको दे सकते हैं। इंडिया ने अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 42-21, सो वेरी गुड डे फॉर द इंडियन कबड्डी टीम बोथ मेंस एंड वुमेन्स। एंड साक्षी वॉज टॉकिंग अबाउट द टेबल टेनिस टीम, और इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम वॉज ऑल्सो अप अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान। और याद दिलाएं इंडियन मेंस हैड टू विन दिस मैच क्योंकि ईरान से हार उनको मिली थी, तो इंडियन मेंस ने पाकिस्तान को हराया 3-0। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हरमीत देसाई, सत्यन गणेशन एंड प्रयास जैन। एंड इस विन के साथ इंडिया अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्वार्टर फाइनल्स, अभी क्वार्टर फाइनल्स की जगह पक्की नहीं हुई है। एंड ऑफकोर्स लेटेस्ट एशियन गेम्स की सारी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़िए ऑन आकाशवाणी। हम एक घंटे में 6:30 में आपको फिर सारी अपडेट्स बताएंगे आईची नगोया से, सो स्टे ट्यून्ड।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: सुनो 107 एफएम रेनबो, सात सुरे सारा दिन।
4: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है दोस्तों अभिनव पुंछी, और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त यानी शाम के 6:30 बजे द एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स। और सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त मैं आपको दे सकती हूँ वो है कबड्डी की दुनिया से, जहाँ हमारी महिलाओं ने आज बांग्लादेश को एक तरफी जीत में शिकस्त दिया है। जी हाँ, द डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ऑब्वियसली वेंट on to defeat Bangladesh 42-21 before the first half। कह सकते हैं कि first half में भारत के पास जो लीड थी वो थी 21-10 की बांग्लादेश के ऊपर, और फर्स्ट हाफ समाप्त होने के बाद बांग्लादेश बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाया ना कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि भारतीय महिलाओं का दबदबा उनके ऊपर बरकरार रहा। फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाने के बाद भी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि भारत ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया था 21-11 से, और अंत में हम कह सकते हैं जो टोटल पॉइंट्स भारत के पास आए वो थे 42 अंक और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास सिर्फ 21 अंक थे। यानी 42-21 से भारतीय महिलाओं की कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को दे दी शिकस्त, और डिपेंडिंग चैंपियंस होने का जो सरताज हमारे सर के ऊपर है इस वक्त वो हमने अभी भी बरकरार रखा है। अभिनव
2: जी हाँ, कामयाबी हमें मिली कबड्डी में और कामयाबी भी हमें मिली है टेबल टेनिस के कोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को हराया मेंस एंड विमेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में। और इंडियन मेंस टीम को ये जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि याद दिलाए इंडियन मेंस टीम 3-0 हारी थी ईरान से, तो उनको आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में, मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से स्ट्रेट गेम्स में हराकर भारत को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहाँ पर लाके खड़ा किया, और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया। एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष, और उन्होंने कलसुम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर। और इसके बाद सिर्फ श्रीजा अकुला को एक नेम से गेम खेलना था, जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको हराया, और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल। और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है।
2: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। और हमें पता है दैट ऑल आर लिसनर्स वाज बी थिंकिंग वेयर इज दिस गोल्ड मेडल कमिंग फ्रॉम। अभी तक इंडिया के पास मेडल्स टैली में इंडिया 12th पोजीशन में, शूटिंग से सिल्वर मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं हमारे पास, मगर गोल्ड कल आ सकता है। जी हाँ, गोल्ड का अकाउंट हमारा खुल सकता है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका 10:30 AM क्रिकेट का मैच होने वाला है, और ये रिपीट है एशिया कप फाइनल का, जहां हमें याद है इंडिया ने वो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, श्रीलंका से रिवेंज लिया था। और साक्षी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोल्ड टुमारो?
1: एनी डे एनी टाइम। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो हमारे एथलीट्स हो या प्लेयर्स हो, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड एनी पर्सन हु लव्स क्रिकेट, हु लव्स स्पोर्ट्स इन जनरल, विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर प्लेयर्स हु वर्क डे एंड नाइट सो हार्ड टू गेट आर कंट्री दैट कवेटेड गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही दोस्तों इस वक्त तो फिलहाल अपडेट्स का सिलसिला यहाँ पर आकर समाप्त तो होता है, लेकिन हम आपसे एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे, जहाँ पर आज के दिन का आखिरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन एशियन गेम्स में।
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: नमस्कार दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 7:02 का, यानी कि समय है छाया लोक का। जी हाँ,
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोक। छाया लोक 107 एफएम रेनबो पर, पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोक।
0: और है सोमवार का दिन, तो आज सजेगी सुरों की महफिल।
2: सुरों की महफिल,
0: दोस्तों आज की महफिल थोड़ी अलग है। आज हम सिर्फ गीत नहीं सुनेंगे, बल्कि उन आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे जो गीत के पीछे छिपी रहती है। वो आवाजें जिन्हें हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन पहचानते नहीं। कभी किसी गीत में अचानक बांसुरी की मीठी तान आती है, कभी तबले की थाप गीत को गति देती है, कभी सितार की झंकार पूरे माहौल को भारतीय रंग देती है, और कभी गिटार के कुछ सुर सुनते ही हमें लगता है कि अरे ये तो वही गीत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गीत की पहचान सिर्फ गायक या आवाज या उसके बोल से नहीं बनती? कई बार किसी गीत की पहचान जो है उसका कोई

वाद्य यंत्र बन जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। गाना शुरू होने से पहले ही कोई धुन गानों में पड़ती है और हम कह उठते हैं, अरे ये गाना तो बहुत जाना पहचाना है।

तो चलिए आज की पूरी महफिल उन कलाकारों के नाम करते हैं जो मंच पर सामने दिखाई नहीं देते, जिनकी आवाज को हम अक्सर अलग से याद करते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्मी संगीत की दुनिया शायद उतनी रंगीन नहीं होती। आज बात होगी बांसुरी की, सितार की, संतूर की, तबले की, ढोलक की, शहनाई की, गिटार की, पियानो की और ऐसे ही कई वाद्य यंत्रों की, जिन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत को अलग अलग रंग दिए। और हाँ, आज आप भी इस महफिल के हिस्सेदार हैं, क्योंकि बीच बीच में हम आपको चुनौती देंगे, सिर्फ सुनकर पहचानिए कि ये आवाज़ किस वाद्य यंत्र की है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन कार्यक्रम के अंत तक शायद आपके कान संगीत को थोड़ा अलग तरीके से सुनने लगे। तो बताइए ये जो प्रिल्यूड है ये कौन से वाद्य यंत्र का है, कैसे ये आवाज़ आई थी, कहाँ से, कौन सा वाद्य यंत्र इसमें यूज़ किया गया था, बताइए।

0: तो चलिए जवाब के साथ हमारे पहले जो कॉलर है वो जुड़ चुके हैं, देख लेते हैं कौन है। हेलो
1: जी, नमस्कार पापिया जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरों की महफिल में।
1: जी, मैं मोहम्मद नासिर, बलिया घाटा, कोलकाता से।
0: जी नासिर जी,

0: कैसे हैं अभी?
1: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और ये दूसरा सेगमेंट है जिसमें आपसे हम बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। वापस बताइए, हाँ जवाब बताइए।
1: आपने जो आज प्रोग्राम लेकर के आया, इंस्ट्रूमेंट पर, ये खास करके प्रोग्राम है धुन पर या बांसुरी पर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो अभी जो आपने गाना बजाया वो फिल्म यादों की बारात से थी और जीना तमान अदाकारा इस गाने को अदा कर रही थी
0: जी।
1: और ये गिलास, गिलास को आपस में गिलास से टकरा कर करके ये इंस्ट्रूमेंट निकल रहा था। और एक उस जमाने में ये काफी फेमस हुआ था ये गाना
0: जी, अभी भी फेमस है। मतलब ये जब प्रिल्यूड सुनते हैं तो बड़ी अभी भी समझ में आ जाता है कि कौन सा गाना बजने वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बात है, ये गाना काफी ही फेमस अभी भी है, उस जमाने में भी फेमस था और बहुत सारे लोग इसे पसंद सुनना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छा गाना बजाया आपने और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने बजाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मैं अपनी तरफ से गाने का फरमाइश करना चाहूंगा
0: जी।
1: हीरो फिल्म जो अदाकारा जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी प्रसाद की थी, जिसमें बांसुरी की धुन, वो अपने जमाने में भी काफी फेमस हुई थी और अभी भी बहुत फेमस है
0: जी।
1: और मैं समझता हूँ कि उस गाने की धुन को, बांसुरी की धुन को बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में रिंगटोन बनाया था।
0: हाँ।
1: तो मेरी फरमाइश है कि वो गाने, हीरो का गाना सुना दिया जाए धुन के साथ।
0: चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपके लिए गाना। ओके
1: शुक्रिया, बात है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। तो ये थे मोहम्मद नासिर जी, सुनना चाहते हैं हीरो फिल्म के से तू मेरा हीरो है। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

तो दोस्तों बांसुरी की बात हो रही थी भाई। बांसुरी की आवाज सुनते ही हमारे मन में अक्सर प्रकृति, खुला आसमान, नदी, पहाड़, प्रेम या कोई बहुत शांत सा दृश्य उभर आता है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि बांसुरी की आवाज मधुर है, इसकी ये खासियत भी है कि इसकी ध्वनि में एक तरह की सांस सुनाई देती है। शायद यही कारण है कि फिल्मों में बांसुरी का इस्तेमाल भावनाओं को बहुत सहज तरीके से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भारतीय संगीत में बांसुरी का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन फिल्म संगीत ने इसे एक सिर्फ शास्त्रीय या पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाकर नहीं रखा। कभी ये प्रेमिका की याद बन गई, कभी किसी ग्रामीण दृश्य की पहचान बन गई।

0: आपने गौर किया होगा कि कई पुराने गीतों में बांसुरी की धुन पूरी तरह नहीं बजती, वो सिर्फ दो तीन सुरों में आती है फिर गायब हो जाती है, फिर किसी खाली जगह को भरने के लिए वापस आती है। यही तो संगीत की खूबसूरती है। हर इंस्ट्रूमेंट लगातार बजाना जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ सेकंड की मौजूदगी भी काफी होती है। फिलहाल चलिए हमारे अगले कॉलर को हम ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: दीदी नमस्ते,
0: आप कैसे हो?
1: हमको साधन फिल्म पर गाना सुनना है, तुम सुनने लगी कहना।
0: ओके जरूर सुनाएंगे, पर आप बताइए आप कहाँ से बोल रही हो, कौन बोल रही है, नाम बताइए अपना।
1: आप लेक्टन कालिन जी से सपना घोष बोल रहे हैं।
0: जी सपना जी, सब ठीक है ना घर पे?
1: हाँ ठीक है दीदी, आपसे बहुत दिन बाद बात हो रहे हैं।
0: चलिए ठीक,
1: आपका आवाज हमको बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, हम आपका गाना सुनाते हैं, तुमसे मिलने की तमन्ना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाज में। ओके, फिर वापस मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। तो फिलहाल चलिए साजन फिल्म से रिक्वेस्ट किया हुआ गाना हम सुन लेते हैं।

दोस्तों, हम जरा अपने मन में किसी ऐसे पुराने गीत को याद कीजिए जिसमें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, और अगली बार जब वही गीत सुने तो गायक की आवाज के साथ साथ बांसुरी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, वही गीत अचानक थोड़ा अलग लग सकता है। और अब हमारी पहली छोटी सी चुनौती, सिर्फ आवाज सुनकर बताइएगा कि अगर किसी गीत के पीछे आपको एक बहुत साफ सांस जैसी मीठी और थोड़ी गोल आवाज सुनाई दे तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बांसुरी ही होगी। और बांसुरी को याद करते हुए हम चलिए सुन लेते हमारा अगला गीत।

0: Hello and welcome to the latest from the Asian Games 2026 from Aichi Nagoya. Aur kya behtareen din tha aaj Bharat ke liye, kyunki India has won 4 medals today at the Asian Games in Aichi Nagoya. 3 medals came from shooting aur sabse pehle silver aaya hamare Indian contingent ke liye 10 man rifle men's team event mein. Himanshu Dhillon, Rudraksh Patil aur Parth Mane ki wajah se India ko mila silver, aur uske baad Himanshu Dhillon with a silver and Rudraksh Patil with a bronze in the men's individual 10 meter air rifle. Yaad dilaye, Himanshu Dhillon ka ye debut Asian Games hai aur kya dhamakedar debut hua hai Himanshu Dhillon ka. Double podium abhi tak India ka sabse pehla double podium hai 2026 Asian Games ka. Hopefully many more to come. Aur humne bola tha 4 medal aaye hain, ji haan, kyunki ek medal bhi aaya. Thanks to MMA fighter Suchika Tarial. She fought a hard match in her bout against her Singapore opponent, and she was very emotional after the end of the match. Magar uske baad, us haar ke baad, Suchika got a bronze. Aur fir hum ab 12th position mein hai in the medals tally. And India, hopefully, abhi bahut bade bade sports baki hain, bade athletes baki hain Indian contingent ke, and hopefully more medals are upcoming. Aur aapko bataye thoda sa preview ki kal kya hone wala hai at the Asian Games. Ji haan, I hope you have an early start, kyunki subah 6 baje badminton hoga, India versus Japan women's team's quarter final. Bahut crucial match hai Indian team ke liye and semi final mein pravesh karne ke liye. 6:15 बजे शूटिंग में जो हमारी अभी तक सिल्वर मेडलिस्ट हो चुकी हैं एलेवनील वारावीरियन, उनके साथ होंगे पार्थ माने, 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन एंड मेडल इवेंट होगा वो 6:15 बजे. 6:30 AM इट्स वुशु टाइम, एंड वुशु में लैंगलिन टॉमी देवी हमारे विमेंस नानक्वान फाइनल में है. याद दिलाएं आपको, नानक्वान फाइनल में 10 कंपेटिटर्स होते हैं, सो होपफुली इंडिया कम्स अवे विद अ मेडल इन दैट इवेंट. 6:30 बजे हमारी शूटिंग के स्कीट के कंपटीशन में मेंस एंड विमेंस टीम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड टीम इवेंट के डे टू में. याद दिलाएं 3 डेज होते हैं स्कीट कंपटीशन में. विमेंस टीम राइट नाउ आर प्लेस 3rd एंड मेंस टीम आर राइट नाउ प्लेस 6th. 7:15 बजे इट्स कबड्डी टाइम. जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया. आज तो इंडियन मैन ने होस्ट जापान को हराया, क्या साउथ कोरिया को भी हरा पाएंगे. 7:35 चेतन भट्ट हमारे मेंस क्यूमाइट कराटे के मैच में दिखेंगे, 84 kg सेमीफाइनल. क्या चेतन फाइनल तक प्रवेश कर पाएंगे. उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर प्री क्वार्टर फाइनल टेबल टेनिस मुकाबला है इंडियन मेंस टीम, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया. क्या इंडिया साउथ कोरिया को अपसेट कर सकता है और जीत सकता है वो क्रूशियल टेबल टेनिस का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच. बॉक्सिंग में भी हमारे 2 बॉक्सर्स कल दिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी अपने 51 kg राउंड 32 मैच में सुबह 9 बजे, और सुबह 10:30 बजे जादुमणि सिंह, यस द आर्मी मैन जादुमणि सिंह, जिनको सिल्वर मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो चाहेंगे उस सिल्वर का कलर बदलकर, रंग बदलकर गोल्ड में कन्वर्ट करें 55 kg राउंड ऑफ 32 मैच. और बहुत एक्सपेक्टेशन है कि कल इंडिया का गोल्ड का खाता खुलेगा, क्योंकि 10:30 AM इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अ रिपीट ऑफ द एशिया कप फाइनल. जी हाँ, एशिया कप में तो इंडिया ने अपना रिवेंज ले लिया श्रीलंका से, कल क्या इंडियन विमेंस टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर पाएंगे. उसके बाद 11:30 बजे इट्स एक्शन कीप्स ऑन कमिंग एट द एशियन गेम्स, क्योंकि इंडिया और जापान का मेंस टीम क्वार्टर फाइनल मैच है बैडमिंटन में. और 3:15 बजे एक और मेडल गारंटी हो सकता है, जी हाँ, वुशु से, क्योंकि रोशिबिना देवी अपने विमेन 60 kg क्वार्टर फाइनल मैच में लड़ेंगी. याद दिलाएं आपको, रोशिबिना देवी ने 2022 में सिल्वर जीता था, 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया था, तो क्या इस बार रोशिबिना देवी विल गो ऑल द वे एंड गेट गोल्ड फॉर इंडिया. And then a big match to end the day. It's the 3:10. It's India versus Sri Lanka in a hockey match. India men's or women's दोनों ने धमाकेदार शुरुआत करी है. Goals are just pouring in. So hopefully we see more goals and more action. And आप आकाशवाणी पे please tune in करिए. हमारे updates सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और आज 10 बजे हमारा special show भी आप सुनना, because it's been a great day for India and you can recap all that happened in a little while from now. And कल सुबह हम वापसी करेंगे 9:30 बजे with the updates every hour. Thank you so much for joining us today on the updates at Akashwani.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: सुरों की महफिल, तो एशियन गेम्स की अपडेट लेने के बाद हम वापस आ गए हैं सुरों की महफिल में और मैं पापिया हूँ आपके साथ। हमारे लिसनर जो है वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं फोन कॉल पर, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरों की महफिल में। जी
3: मैं राजकुमार
2: बोल रहा हूँ। जी राजकुमार जी कैसे हैं, हाल चाल सब ठीक है, तबीयत ठीक है एकदम, घर परिवार में सब ठीक?
3: हाँ ठीक है मैडम, सब घर परिवार सब ठीक है,
2: चलिए बहुत अच्छी बात है।
3: गाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।
2: हाँ जी
3: फिल्म का नाम है फूल बन गए, गाया मुकेश ने
2: जी,
3: गाने का गा के सुना सकता हूँ आपका?
2: हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, क्यों नहीं सुना सकते। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच राजकुमार जी। चलिए अब आपका रिक्वेस्ट किया गाना सुन ले हम। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, वापस मुलाकात होगी, अच्छे से रहिएगा। तो ये थे राजकुमार तातिया जी नरेंद्रपुर से। तो और सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज़ में चांद आहे भरेगा, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: इतने खूबसूरत गाने भजें ये भाई, तो फिर चांद तो आहे भरेगा ही। और ऐसे में हमारे अगले जो कॉलर हैं वो भी जुड़ चुके हैं हमसे, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो पापिया जी नमस्कार, राधे राधे।
0: नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप बताइए, नाम बताइए सबको अपना।
1: मैं श्याम कुमार चंचल मानिकपुर से बोल रहा हूँ
0: जी। श्याम जी कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है? और आपकी तबीयत शायद खराब थी तो अभी ठीक है?
1: अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप भी अच्छी हैं होंगी और आपके परिवार में सब अच्छे होंगे
0: एकदम, बस आप लोगों की दुआ है। बताइए
1: पापिया जी, आपने बांसुरी की बात कही तो बांसुरी वादक जो हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी, उनको कौन भूल सकता है?
0: बिल्कुल नहीं भूल सकते।
1: और उनने कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत फिल्मों में बांसुरी बजाई है, फिल्म गीत में भी उन्हीं ने बजाई है।
0: अच्छा,
1: तो मैं गीत फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मेरे लिए दुआ, उसमें बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है।
0: ओके चलिए बिल्कुल सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे आपके साथ,
1: और आगे बात फिर होंगी हम आपसे करेंगे
0: जी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, एकदम अच्छे से रहिएगा, ठीक है? वापस मुलाकात होगी।
1: आप भी ठीक रहिएगा
0: एकदम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।

दोस्तों, हिंदी फिल्मों में सितार का इस्तेमाल खासकर उन कॉम्पोजिशंस में खूब हुआ जहां संगीतकार को भारतीय शास्त्रीय सरंग लाना चाहिए था। लेकिन सितार का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर या क्लासिकल गीतों में नहीं हुआ, रोमांटिक गीतों में भी इसकी झंकार को एक अलग मूड में दिखाया गया। यह एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम कहते हैं कि किसी गीत में सितार बज रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गीत सितार पर आधारित है। एक बार सितार सिर्फ इंटरल्यूड में आता है, गायक एक पंक्ति गाता है, फिर थोड़ी सी जगह मिलती है और वही सितार उस भाव को आगे भी बढ़ाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट कई बार गायक का दूसरा संवाद बन जाता है। चलिए सुनते हैं इसी बात पर हमारा अगला गीत।

वही बात हो रही थी, सितार की तो संतूर की आवाज अगर बात करे तो संतूर की आवाज में भी एक चमक है। लकड़ी के छोटे छोटे हथौरों से तारों पर चोट की जाती है और एक साथ कई तार कंपन करने लगते हैं, परिणाम होता है टुन टुन करती चमकती हुई ध्वनि। संतूर को हिंदी फिल्मी संगीत में जिस तरह इस्तेमाल किया गया है उसने इसे आम श्रोताओं तक पहुंचाया, खासकर रोमांटिक और मेलोडिक कॉम्पोजिशंस में इसकी आवाज बहुत सुंदर बैठती है। और वह यहाँ एक छोटी सी बात समझने लायक है कि संगीत में इंस्ट्रूमेंट का चुनाव जो है वो केवल इसलिए नहीं किया जाता कि उसकी आवाज अच्छी है, संगीतकार ये भी सोचता है कि सीन क्या है। अगर दृश्य में सॉफ्टनेस चाहिए तो एक इंस्ट्रूमेंट चुना जा सकता है, अगर टेंशन चाहिए तो दूसरा, और सेलिब्रेशन है तो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स आगे जा सकते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट्स भी एक्टिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभिनेता चेहरे के भाव व्यक्त करते हैं ना, वैसे ही वाद्य यंत्र अपनी ध्वनि से भाव भी व्यक्त करते हैं। अब आइए तबले और ढोलक की बात कर लेते हैं, पर उससे पहले स्वानंद किरकिरे की आवाज में हमारा अगला गीत।

अगर मेलोडी किसी गीत की कहानी है तो रिदम कई बार उसकी चाल। आपने कभी कई बार कोई गीत बिना ताल की कल्पना करने की कोशिश की है? वही शब्द, वही धुन, वही आवाज, लेकिन रिदम गायब। अचानक कुछ अधूरा सा लगेगा ना। तो तबले की थाम गीत की सिर्फ बीट नहीं देती, वो उसके मूड को भी तय करती है, है ना। और धीरे धीरे बातें करते करते देखिए कैसे समय वो गुजरता गया, बीतता गया। अब पहला घंटा भी समाप्त होने को है। और बात हुई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, ऑलमोस्ट कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, तो गिटार की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता था। गिटार को थोड़ा सा मेंशन करते हुए तो ज़रूर जाना चाहिए कि गिटार की आवाज़ हिंदी फिल्म संगीत में इतनी सामान्य से लगती है कि हम शायद सोचते भी नहीं कि एक ऐसा समय भी था जब भारतीय फिल्म संगीत में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल का अपना एक अलग दौर था। गिटार ने हिंदी गीतों को खासकर रोमांटिक, यूथफुल और हल्के फुल्के कॉम्पोजिशंस में एक नया टेक्सचर दिया है। अकाउस्टिक गिटार हो, सॉफ्ट स्ट्रमिंग हो या इलेक्ट्रिक गिटार की चमकदार लाइन, दोनों का अपना कैरेक्टर है और यही फर्क समझना बहुत मजेदार है। फिलहाल जो है समय मुझे बता रहा है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, यानी कि पापिया अब तुम स्टूडियो से बाहर निकल सकती हो। तो फिलहाल मेरे तो जाने का वक्त हो गया है, पर इसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अगले घंटे में आपके साथ रहेंगे रोशन मुरारका, तो उनके साथ बातें कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे और मज़े कीजिए। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, यूं ही 107 FM रेनबो है ये। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वापस मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। बातें होंगी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किसी और दिन, बहुत एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे वापस और ढेर सारे इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सुरों की महफिल का पहला जो भाग है यहीं पे ख़त्म होता है और मैं पापिया लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी अगले किसी एक दिन। फिलहाल के लिए शैल हदा और राकेश पंडित के पास में फिल्म गुजारिश से बहुत ही प्यारा सा कॉम्पोजिशन छोड़े जा रही हूँ आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए, बने रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का लेकर कार्यक्रम छायालोक।

अब भाई रास्ते से जा रहे हो या घर में बैठे हो उससे मुझे क्या मतलब है, आपको तो बस नंबर डायल करना है। नंबर है हमारा 2213-1341 और आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का आपके फोन कॉल्स का और आपकी फरमाइश का इंतजार कर रहा है। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहे हैं तो सुनिए तो जनाब, है ना?

0: अरे भाई देखिए कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हो गए हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।

0: थे।
1: अरे भाई साहब, ये एड्रेस उड्रेस पूरा बता देते हैं, क्या बात है? ये एड्रेस पूरा बता देते हैं, क्या बात है? नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं मिल रही, थोड़ा फोन को अपने पास करिए। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। ये गाना आपको पसंद है या फिल्म पसंद थी? चलिए ठीक है, सुनवाते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार,
1: मैं तन्मय मकल बात कर रहा हूँ हावड़ा बोहरिया से।
0: बोलिए जनाब, कैसे हैं?
1: मैं तो बढ़िया हूँ, तुम्हारा घर परिवार सब कैसा है?
0: सब बढ़िया है भाई, बताइए, यहाँ तो फरमाइश, बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं सोल्जर से तेरा रंग बल्ले वाले सुनोने का वार चश्मिन।
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ भाई बोलिए बोलिए।
1: मैं सोल्जर से सुनोने का वार चश्मिन में रहना की आवाज में तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले गाना सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा भाई साहब, लगता है आप गाते वाते हैं, गाना गाते हैं ना?
1: नहीं नहीं, मैं हिंदी गाना ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: हाँ, और आप कुछ कुछ गुनगुनाते भी हैं ऐसा लग रहा है आपसे बात करके।
1: हाँ, वो काम करते करते गुनगुनाता
0: हूँ, मैं समझ गया था।
1: मैं आपको आप भाई मैं क्या बता रहा हूँ। हेलो
0: हाँ हाँ जी,
1: आपको एडवांस में दुर्गा पूजा की?
0: नहीं नहीं, वो तो बधाई तो होगी ही, लेकिन आपको आज एक गाना सुनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गाना वाना गाते हैं। हेलो,
1: अच्छा नहीं आता
0: वॉइस, नहीं है ना भाई, मेरे को यहाँ लग रहा है कि आप अच्छा गाते हैं, थोड़ा गुनगुना के दिखाइए ना, श्रोता डिसाइड करेंगे, सुनने वाले बताएंगे आप कैसा गाते हैं। एक बार आज यही गाना सुनाइए जिसकी आपने फरमाइश की है, वही गाना सुनाकर दिखाइए सुनने वालों को।
1: ठीक है,
0: हाँ स्टार्ट। हेलो हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। हाँ क्या हुआ? भाई हमारे ये श्रोता बंधु तो थोड़ा गाने में घबरा रहे थे, कोई बात नहीं, आपको अपनी फरमाइश लेके आनी है, अपनी दिल की बातें हमें बतानी है, क्योंकि आपका ये रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का केवल 9 बजे तक आपके साथ है। तो अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त से बात करना, अपनी फरमाइश लेकर आना, तो फटाफट आइए 2213-1341 जहां आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों हमें भी एक पल चैन नहीं आता जब आपके फोन कॉल्स हमारे पास तक नहीं पहुंचते। फिलहाल ऐसी ही कुछ स्थिति है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और उसके बाद इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। नंबर है 2213-1341। आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है आपके रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ,
1: मैं बरगाछिया से प्रशांत धौक बोल रहा हूँ।
0: बोलिए।
1: हाँ, तो मैं माने एक फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है सुला और सब नाम, और गाने के बोल है जाने दो मुझे जाने दो।
0: कहाँ जाना है?
1: जाना कुछ नहीं है, फिलहाल तो आपके पास फोन लगाना था तो मिल गया। यही है। और ये फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये फिल्म जब रिलीज हुआ तब तो नहीं देखा था, उसके बाद मेरा बरगछिया में एक हॉल था सचिमा, उसमें 6-7 साल रिलीज के 6-7 साल के बाद लगा था। तो ये फिल्म मैंने हफ्ते में 3 बार देखा था।
0: टिकट कटाया था?
1: कटाया था, पर आखिर दिन सेकंड माने जो माने दोपहर का जो शो था, मॉर्निंग शो, इवनिंग शो और नाइट शो दोनों एक ही दिन में देखा था।
0: तो मतलब ऐसा क्या हो गया था भाई साहब कि आपने एक ही दिन में एक ही फिल्म 3 बार देख ली? जरूर टिकट नहीं कटाया होगा।
1: टिकट तो कटाया था।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। अगर टिकट कटाया था, सच बोल रहे हैं, तो गाना सुना देते हैं आपको, है ना?
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। हाँ।

0: भाई जाने कैसे दे देंगे, कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, जरा उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: भैया, आप ठीक है ना?
0: अरे भैया ठीक है, बताइए।
1: हाँ बताइए, हमको चोरी मेरा काम से चोरी मेरा काम गाना।
0: क्या बता रहे हैं, कौन सा बोल रहा है?
1: कौन सा
0: बोलिए?
1: चिचुरा से अशोक कर बोल रहा।
0: अच्छा अशोक जी, ये क्या चोरी मेरा काम गाना सुनना है या क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप?
1: वो तो गाना बताया तो हम।
0: अच्छा
1: तो
0: गाना बताया। अच्छा क्या करते हैं वैसे आप?
1: हाँ
0: आप क्या करते हैं?
1: हम कुछ नहीं करते।
0: कुछ नहीं करते?
1: नहीं, हमारा 64 साल हो गया और जो आंखों का रश्मि आ गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: पहले हम गाड़ी चलाता था।
0: ओके ओके, चलिए ठीक है, सुनवाते हैं। चोर चोर चोर।

दोस्तों हमारे कॉलर फ्रेंड तो बता कर गए कि उन्होंने किस फिल्म का कौन सा गीत सुनना है। अगर आप भी चाहते हैं तो वक्त बहुत ही कम है, केवल 14 मिनट आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके साथ है। डायल करना है आपको नंबर 2213 1341 और लेकर आना है अपनी फरमाइश, तो फटाफट आइए।

0: चलिए दोस्तों देखते हैं, कॉलर फ्रेंड लाइन पर हैं, वक्त बहुत कम है, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते, शुभजीत बोल रहा हूँ बेलगुरिया से।
0: नमस्ते नमस्ते, बताइए।
1: रोशन जी, आपका जो ये प्रोग्राम है, एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग काम से आते हैं वापस तो बस में हो या ट्रेन में हो तो हेडफोन लगा लो और आकाशवाणी का ये प्रोग्राम सुन लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम लोग 70s 80s 90s इस दौरान जो गाने हैं सुनने का मौका मिलता है, जो एक्चुअली रेडियो स्टेशन में आकाशवाणी को छोड़ के बहुत कम ऐसा स्टेशन है जहाँ पर ये ओल्डीज जो है, ओल्डीज गोल्ड है ना, तो जो ओल्डीज सुनने को मौका मिलता है। तो रोशन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये गाना बजा रहे हैं और एकदम काफी एंजॉय कर रहे हैं।
0: भाई ये एक्चुअली आप पर भी डिपेंड है कि आप कैसे गीत फरमाइश करते हैं, है ना।
1: जी तो जो भी लिसनर फोन करते हैं तो उनको भी थैंक यू। आज मैं सुनना चाहता हूँ सिलसिला फिल्म का ये कहाँ आ गया है।
0: कहाँ गए भाई साहब आप?
1: मैं कहीं नहीं है, यही है,
0: यही कलकत्ते, कलकत्ते में ही है ना।
1: जी जी जी कलकत्ते में।
0: चलिए ठीक है, सुनवा देते हैं गाना, थोड़ा लंबा है, कोशिश करूंगा एक और कॉल लेने का, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: दोस्तों वैसे तो वक्त बहुत कम है, लेकिन एक कॉलर फ्रेंड है, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, मैं पुलटी बोल रही हूँ, हावड़ा से।
0: बताइए
1: जी, मुझे साजन फिल्म से देखा है पहली बार, ये गाना सुनना है।
0: साजन फिल्म से देखा है पहली बार। अच्छा ये बताइए, फिल्म अच्छी है या गाना अच्छा है, क्या पसंद है आपको?
1: मुझे फिल्म भी अच्छी लगती है, गाना सारे के सारे गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके सलमान खान और माधुरी दीक्षित जी का एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगा। मतलब फिल्म ही फेवरेट है।
0: क्या फेवरेट है?
1: पूरा फिल्म मूवी अच्छा लगता है।
0: अच्छा पूरी फिल्म ही अच्छी लगती है, ठीक है चलिए सुनवाते हैं, है ना
1: जी। हाँ,
0: वक्त बहुत कम है।
1: हाँ।

दोस्तों आप सबों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। फिलहाल आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुराका को यहीं दीजिए इजाजत, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने ही वाले हैं। कार्यक्रम छायालोक समाप्त करने का वक्त हो गया है। तो फिर मिलूंगा किसी अगली शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: We now bring you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नगोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नगोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नगोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
3: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज़ फार एज़ शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
2: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
4: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
2: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
5: द इंडियन शटलर्स गेव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 टू हेल्प इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। लक्ष्य सेन गेव इंडिया द परफेक्ट स्टार्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द मेंस टीम फर्स्ट राउंड टाई, डिफीटिंग एमान जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12 एंड thereby putting इंडिया अहेड इन द टाई। Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
2: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
4: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रिमसियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
2: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और

0: अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
1: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. To agar dekhe overall, to Bharatiya swimmers ke liye aaj ka din bahut hi nirasha जनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम 2026 में।
0: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीत कर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
0: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही है साक्षी मांडवाल।
1: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड थेरबाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। एंड देन केम श्रीजा कुला हु वाज एबल टू कन्वर्ट दैट 2-0 कमांडिंग पोजीशन टू अ 3-0 विक्ट्री, थेरबाय सीलिंग इंडियाज विन इन आवर फेवर। इंडिया विल नाउ बी फेसिंग थाईलैंड टुमारो इन द प्री क्वार्टर फाइनल मैच। Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Satyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2

0: also in his name, 3-0. And in match number 3, Faiz Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगन काम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन टॉप टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
2: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko. Unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko. Magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
3: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: गाने बाजू ऑन एयर रेडियो सुनछो 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi.
6: Tumi Shuncho Bangla O Hindi Ganir Countdown Show, Rainbow Top 20, only on 107 FM Rainbow, Rainbow Top 20, Rainbow Top 20. FM Rainbow Day. Rainbow Flashback Song. Rainbow Flashback Song.

0: Top 20. Top 20. Song number 8. Song number 8.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल ना हो।